0: वंदे मातरम,
1: वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला।

0: वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi met the representatives of the Tribal Security Forum in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said their dedication to the tribal community is truly commendable. He stated that during the meeting, meaningful discussion

0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध है कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजाति समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी ऑफ बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। श्री शाह ने कहा कि अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लों वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा बढ़ा दी है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi met the representatives of the Tribal Security Forum in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said their dedication to the tribal community is truly commendable. He stated that during the meeting, meaningful discussions were held on various topics related to the development of tribal communities and their empowerment. Vice President C.P. Radhakrishnan will undertake a 3-day visit to Karnataka, Goa and Keralam.

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ

0: खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
1: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
2: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगू से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और
4: सत्रानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है। और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। होम मिनिस्टर अमित शाह सेज सेंटर्स हाई लेवल कमिटी ऑन आर्टिफिशियल डेमोग्राफिक चेंजेस टू ऑल्सो असेस रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ टू टैकल द इश्यू। National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all-important qualifier 2 in New Chandigarh this evening. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's High-Level Committee on Artificial Demographic Changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue. Mr. Shah said the committee will examine the causes behind the artificial demographic shifts that have occurred across the nation. It will deliberate on the remedial measures required and should the enactment of any specific legislation be necessary. The Home Minister was addressing a function in Gandhinagar yesterday after inaugurating and laying foundation stone of development projects worth 340 crore rupees. He said the committee, headed by retired Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Naulekar, would submit its report within a year.
6: Removing infiltrators from the country is a commitment of our government. And for this, Prime Minister Narendra Modi has decided to

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल, जिसे आप अपने मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं, सुन रहे हैं। हर सुबह 9:10 पर हम उपस्थित होते हैं आपके लिए लेकर भाव प्रधान गीतों और बातों का कार्यक्रम रसधारा। आज के हमारे रसधारा कार्यक्रम का विषय है इमोशन, इमोजीज और डिजिटल रिश्ते। कार्यक्रम जिसमें हम ढेर सारी बातों के साथ पहुंचाते हैं आप तक सुमधुर संगीत। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक गीत के साथ, सुनते हैं अनुराधा पौडवाल, अमित कुमार और साथियों की आवाज में इस गीत को।

136वीं डाक अदालत। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 17 जून 2026 को पूर्वाह्न 11:30 पर मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगायोग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 7000012 में गूगल मीट के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संपूर्ण ब्यौरा जैसे कि संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकरणों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर उल्लिखित होना आवश्यक है। शिकायत श्री एससी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल P36 CR एवेन्यू कोलकाता 7000012 के नाम से भेजी जाए और यह डाक ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in या फिर adpgc

pg.owb@gmail.com अथवा pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 1/6/2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट के जरिए डाक अदालत में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा से दूरभाष संख्या 0332212050 अथवा 0332212062 या फिर 0332212500 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत के आवेदन पर डाक अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। एक सौ छत्तीसवीं डाक अदालत की इस सूचना के बाद सुनते हैं कार्यक्रम रसधारा में अगला गीत, पंकज उदास, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल कार्यक्रम भाव प्रधान गीतों और बातों का रसधारा। रसधारा में आज हम बात कर रहे हैं एक अलग

तरह के इमोशन की। डिजिटली कनेक्टेड भावनाएं। मानव जीवन का आधार ही भावना है। प्रेम हो, मित्रता हो, करुणा हो, सहानुभूति हो, क्रोध हो, दुख हो, आशा हो, उत्साह हो, ये सभी भावनाएं मिलकर मानव को बनाती हैं। और बात करें अगर हम इन भावनाओं की, तो प्राचीन काल से लेकर और आज तक मनुष्य अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के अलग अलग तौर तरीके खोजता रहा है, निकालता रहा है, ढूंढता रहा है, और उसी फेरहिस्त में भाषा सामने आई। भाषा से पहले हम चित्रों के माध्यम से, कला के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। संगीत, साहित्य, कला, नृत्य, भावाभिव्यक्ति के ये सशक्त माध्यम हैं। और जब हम डिजिटल युग में प्रवेश किए, जब मोबाइल, सोशल मीडिया, तरह तरह के डिजिटल इक्विपमेंट्स हमारे हाथ में आए, तो हमने भावाभिव्यक्ति का एक अलग सा तरीका निकाला, और वो तरीका है इमोजीज। छोटे छोटे स्टिकर्स जिनमें कुछ अलग अलग भाव भंगिमाएं, अलग अलग आकार प्रकार हमारे अलग अलग भावों को व्यक्त करने में हमारी मदद करते हैं। किस तरह से ये स्टिकर्स मदद करते हैं और कभी कभी ये कैसे हमारे लिए मुसीबत का कारण बन जाते हैं, जी हाँ, इन सभी बातों पर थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश डाला जाएगा। लेकिन उससे पहले सुनेंगे अमित कुमार, साधना सरगम और साथियों की आवाज में इस गीत को।

जब हम किसी के साथ आमने सामने बैठकर बातें करते हैं, आंखों में आंखें डालकर बातें करते हैं, तो चेहरे के भाव देखे जा सकते हैं, दिखाए जा सकते हैं, क्योंकि हर भाव को शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर हम डिजिटली किसी से कनेक्ट होते हैं तो ऐसे में कितने शब्दों का आदान प्रदान करें। उस समय हमारे साथी होते हैं हमारे ये इमोजीज। लेकिन एक चीज और है जो हमें इन इमोजीज में ध्यान रखनी है, किस इमोजी का प्रयोग कहां करें और कितनी बार करें। कई बार हम किसी और भाव से किसी इमोजी को सामने वाले तक पहुंचाते हैं, लेकिन सामने वाले की मनस्थिति कुछ और चल रही है, तो शायद वो हमारी इमोजीज को, हमारे इस आदान प्रदान को अदरवाइज ले ले।

लेकिन फिर भी ये इमोजीज हमारी भावनाओं को, हमारे निर्णयों को, हमारे व्यवहार को, हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने में, एक दूसरे तक पहुंचाने में बेहद सार्थक साबित हुए हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि मनुष्य की महानता उसकी शक्ति में नहीं बल्कि उसकी संवेदनशीलता में निहित होती है। वो कितना किसी को महसूस कर सकता है, इससे पता चलता है कि वो कितना शक्तिशाली है। और यही संवेदनशीलता भावनाओं का दूसरा नाम है। वर्ष 1999 में जापान के डिजाइनर शिगेताका कोरिता ने आधुनिक इमोजीज का निर्माण किया। धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया और आज सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, कह सकते हैं लाखों की संख्या में इमोजीज उपलब्ध हैं। आज तो कंडीशन ये है कि हर कोई अपने इमोजी स्टिकर्स भी क्रिएट कर पा रहा है। डिजिटली हम इतने समर्थ हो चुके हैं, इतने सक्षम हो चुके हैं। इन इमोजीज ने डिजिटल संवाद को बेहद जीवंत और भावनात्मक बना दिया है। जो इन इमोजीज की भाषा को समझते हैं वो समझ सकते हैं कि अगर हमने एक थम्स अप का साइन सेंड किया तो क्या अर्थ है, एक स्माइल सेंड किया तो क्या अर्थ है, और आगे बढ़ते बढ़ते अब तो उस स्माइली के आंखों में दिल भी बना हुआ है। अर्थात आपकी ये बात सिर्फ हमें पसंद नहीं आई, आपकी ये बात हमें दिल से पसंद आई। अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में अगला गीत।

कार्यक्रम रसधारा में आज हम बात कर रहे हैं इमोशन, इमोजी और डिजिटल रिलेशनशिप की। तो अगर बात करें इमोजीज की, तो ये हमारे संवाद को बेहद सरल बना देते हैं, कम शब्दों में अधिक भावों को व्यक्त करते हैं। कई बार लिखित संदेशों का अर्थ गलत समझा जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हो सकता है हमारे जो इमोजीज सेंड करने के भाव हैं, उसे अगला कुछ अलग अर्थों में ले ले। तो अगर शब्द नहीं है वहां, सिर्फ एक इमोजी है, तो हमारे पास खुद को क्लियर करने का, यानी कि ये जो इमोजीज होते हैं वो ओपन एंड होते हैं, हम जैसे चाहें वैसे इसे मोड़ सकते हैं। तो अगर गलत अर्थ समझा गया हो संदेश का, तो इमोजीज हमें उससे भी बचाते हैं। दूर रहने वाले लोगों के बीच भावनात्मक निकटता को बनाते हैं ये इमोजीज, और रचनात्मकता को भी अच्छी तरह से व्यक्त कर पाते हैं ये इमोजीज। कई बार एक छोटा सा इमोजी व्यक्ति को भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है। और अब जो रिएक्शन का जमाना आ गया है, तो अगर हम ऑफिशियली बात करें, अगर हम स्कूल कॉलेजेस के ग्रुप्स की बात करें, तो वहां किसी एक मैसेज पे जी आपने ये बात कही और ये बात मुझ तक पहुंची, इतना लिखने की बजाय लोग सिर्फ एक थम्स अप रिएक्ट कर देते हैं और अगला एक्नॉलेजमेंट पा जाता है कि हाँ, मेरे मैसेज को इन इन लोगों ने देखा है। हाँ, इनमें कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि रिश्ते केवल लाइक, कमेंट और इमोजीज तक ही सीमित रह जा रहे हैं, शब्दों से लोग दूर हटते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें, तो ये इमोजीज हमारे रिश्तों को मजबूत बनाने में काफी हद तक सहायक भी हैं। और घड़ी की सुइयां कह रही हैं बस आज का ये कार्यक्रम इतना ही। तो दीजिए आज्ञा पूजा को कार्यक्रम रसधारा से, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता के एफएम, माफ कीजिएगा, आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता चैनल पर मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर। चलते चलते आपके लिए आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की, सुनते रहें, साथ बने रहें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसंख्या के बदलावों के लिए जांच की गठित समिति उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के

0: जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विनम्रता, क्षमाशीलता और श्रेष्ठ आचरण ही व्यक्तित्व के सच्चे आभूषण हैं। संस्कृत का एक उदाहरण साझा करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्हीं गुणों के साथ देशवासी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में दृढ़ता से जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वो विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा मौत मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृहमंत्री अमित शाह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's high-level committee on artificial demographic changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue. Mr. Shah said the committee will examine the causes behind the artificial demographic shifts that have occurred across the nation. It will deliberate on the remedial measures required and should the enactment of any specific legislation be necessary. The Home Minister was addressing a function in Gandhinagar yesterday after inaugurating and laying foundation stone of development projects worth 340 crore rupees.
2: Removing infiltrators from the country is a commitment of our government. And for this, Prime Minister Narendra Modi has decided to form a demographic change committee. This high-powered committee will examine the reason behind the demographic changes that have taken place across the country and look into the possible solutions. It will also consider where there is a need to bring any new law regarding this issue.
1: Union Home Minister Amit Shah will visit the strategically significant areas along the international border in Kutch on the second day of his Gujarat tour today. During the visit, he will review the security arrangements made by the Border Security Force and discuss border security challenges with senior officials. The BJP has appointed new party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. BJP National President Nitin Naveen appointed East Delhi MP and Union Minister Harsh Malhotra as the party's Delhi unit president. Dr. Archana Gupta has been appointed as Haryana BJP chief and Kewal Singh Dhillon will be the new president of Punjab BJP. Abhishek Debroy has been

297.4 1008 किलो हर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचेता। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 10:16 और मैं हूं आपकी मेज़बान सूफिया शीरिंग। आज है दुलाजा का दूसरा दिन, आप लोगों को इधर दुलाजा की ढेर सारी मुबारकबाद, लेकिन साथ ही ये दुआएं भी कि ये त्यौहार अमन और शांति से, सुकून से, प्यार और मोहब्बत से गुजर जाए, क्योंकि ये त्यौहार हमें कुर्बानी का जज्बा सिखाता है, ये त्यौहार हमें सब्र और तहमुल सिखाता है, ये त्यौहार हमें भाईचारे की दावत देता है, एक दूसरे से गले मिलने की, एक

आज आईना में मौसू है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस मेकर्स यानी आलमी यौम अक़वाम मुत्तहदा अमन मुहाफिज़ीन का दिन। सामईन कराम, आलमी यौम अक़वाम मुत्तहदा अमन मुहाफिज़ीन जो कि हर साल 29 मई को पूरी दुनिया में आलमी यौम अक़वाम मुत्तहदा अमन मुहाफिज़ीन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद इन बहादुर सिपाहियों, अफसरों, डॉक्टरों, नर्सों और रजाकारों को खिराज तहसीन पेश करना है जो दुनिया में अमन कायम रखने के लिए अपनी खिदमात अंजाम देते हैं। अक़वाम मुत्तहदा के अमन मुहाफिज़ीन मुख्तलिफ ममालिक में जंग बदअमनी और खाना जंगी के शिकार इलाकों में जाकर अमन अमान बहाल करने की कोशिश करते हैं। अक़वाम मुत्तहदा का क़याम दूसरी आलमी जंग के बाद 1945 से ज़िम्मे अमल में आया ताकि दुनिया को जंग व तबाही से बचाया जा सके। इसी मकसद के तहत अक़वाम मुत्तहदा ने अमन मिशन कायम किए जिनमें मुख्तलिफ ममालिक के फौजी या शहरी अहलकार शामिल होते हैं। ये अमन मुहाफिज़ीन जंग ज़दा इलाकों में लोगों की हिफाजत करते हैं, जंग बंदी पर अमल कराते हैं, इंसानी इमदाद पहुंचाते हैं और मुतासर अवाम को बेहतर ज़िंदगी फराहम करने में मदद देते हैं। दुनिया के कई ममालिक जिनमें भारत भी शामिल है अक़वाम मुत्तहदा के अमन मिशंस में अहम किरदार अदा करते हैं। भारतीय फ़ौज के हज़ारों जवान मुख्तलिफ ममालिक में अमन कायम करने के लिए अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इनकी बहादुरी और इंसान दोस्ती को आलमी सतह पर सराहा जाता है। आज के दौर में जब दुनिया दहशतगर्दी, जंग, नफरत और तशद्दुद जैसे मसाइल का सामना कर रही है, ऐसे में अमन मुहाफिज़ीन की जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं। हमें चाहिए कि हम भी अपने माशरे में अमन, भाईचारा, मोहब्बत और रवादारी को फ़रोग दें ताकि दुनिया एक पुरअमन जगह बन सके। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि आलमी यौम अक़वाम मुत्तहदा अमन मुहाफिज़ीन हमें अमन की अहमियत का एहसास दिलाता है और उन बहादुर इंसानों की कुर्बानियों की याद ताज़ा करता है जो इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ करते हैं।

और हर शख्स एक रोबोट की जिंदगी गुजार रहा है। शहरों में अगर हम सब जगहों की तलाश करें, अगर हरियाली की तलाश करें, तो हम ये देखते हैं कि शहरों में सब जगहों की बेशुमारी मिसालें हो सकती हैं, लेकिन आम तौर पर दो बुनियादी मकामात हैं जिनमें आवामी और निजी जगह शामिल हैं, जैसे पार्क, बागात, ग्रीन बेल्ट, दरख्त और पौधे वगैरह। सैर तफरी के लिए डिज़ाइन किए गए पार्क और बागात अक्सर किसी भी रिहायश कम्युनिटी का सबसे कीमती हिस्सा होते हैं। घास वाली ज़मीन और ऐसे लंबे सजावटी दरख्तों के अलावा ये खुली जगहों ज़्यादातर पैदल चलने के लिए रास्तों या जॉगिंग एरियाज, साइकिलिंग लेन, लकड़ी के बेंचों, फूल झूलों और स्लाइडर्स पर मुश्तमिल बच्चों के खेल के मैदान से जुड़ी होती हैं। बहुत से घरेलू खरीदार पार्क के करीब रहने के लिए अजाफी अदायगी करते हैं ताकि इनके लिए अहले खाना कुछ ताज़ा हवा से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। हिंदुस्तान में शजरकारी की मुख्तलिफ महम जोई चली रही हैं जिसमें शहरी जंगलात की तादाद में इजाफा हो रहा है। ऐसे इकदाम माहौल और इंसान की सेहत के लिए नहायत ज़रूरी हैं। मजीद बरा ये परिंदों, कीड़ों मकौड़ों और छोटे जानवरों के मुख्तलिफ अकसाम के नशोनुमा खुराक के हसूल का सबसे बुनियादी सबब भी बनते हैं। नेशनल पार्क आमतौर पर देही इलाकों या शहर की हदूद से बाहर वाक़ होते हैं जिनमें ज़्यादातर अवामी तफरी के लिए बनाए जाते हैं। हम हरियाली से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए ऐसे पार्कों में भी जा सकते हैं। शहरों में भी आजकल देखिएगा कि ऐसे घर बन रहे हैं, ऐसे अपार्टमेंट बन रहे हैं जहाँ पर हरियाली का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, छोटे मोटे बागात बनाए जा रहे हैं। हाँ, आप अपने अगर आपका खुद का मकान है तो आप अपने आंगन में सब्ज़ा उगाइए। अगर आपका इतनी जगह नहीं है तो फिर टेरेस गार्डन कीजिए। फल और सब्जियों के साथ साथ फूलों को भी उगाइए। देखिए इससे क्या होता है कि आपके तो सब्जियों की खपत भी हो जाती है, सब्जियां भी आपको मिल जाती हैं, साथ साथ आपका हरियाली भी बढ़ जाती है। अगर इसी तरह से हम सभी कोशिश करें ना तो हरियाली और सब्जा का जो हमारी किल्लत होती जा रही है ये बहुत जल्द दूर हो जाएगी। और इस जो भी बची है, जितनी भी खुद ज़मीन पर हरियाली और सब्जा बचा है, उसकी हिफाजत करना हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है। देखिए हर काम तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती नहीं है ना, कुछ कुदरती वसाइल है ना जिनके लिए हमें और आपको भी ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए आज मंजरनामा में हमने इस मौसम पे थोड़ी बात की है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस पर तफसीली गुफ्तगू हो, कोई मेहमान आए और आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद मालूमात फराहम करें। लेकिन याद रखें कि मालूमात हासिल करना और इस पर अमल करना आपकी भी जिम्मेदारी है।

0: आप सुन रहे थे अमजद फरीद साबरी की आवाज़ में ये नगमा। और अब चलिए बता दूं कि इस स्टोरी की घड़ी में वक्त हुआ है 10:39, यानी कि ये वक्त है कि हम आपको ले जाएं साइंस की दुनिया में। जी हाँ, सब्ज़ा भी है, हरियाली भी है, अमन भी है, शांति भी है, लेकिन इन सब के बीच में हर जगह साइंस का कारनामा अंजाम हो रहा है। तो आइए चलिए बात कर लेते हैं हम साइंस खेल खेल में इलेक्ट्रिसिटी पर। सरफराज अहमद के साथ गुफ्तगू में हिस्सा ले रहे हैं हमारे अनाउंसर, लेकिन आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम आप रिपीट समाप्त फरमा रहे हैं, यानी मुकर्रर समाप्त फरमा रहे हैं। ये प्रोग्राम आप पहले भी समाप्त फरमा चुके हैं।
1: सामिन, आप सबका खैर मकदम है हमारे आज के तालीमी और मालूमाती प्रोग्राम साइंस खेल खेल में। आज हम बात करेंगे इस दिलचस्प मौजू पर कि कैसे साइंस को खुश्क फार्मूलों से निकालकर खेल मुशाहदे और तजुर्बे के रंगों से ढाला जा सकता है, कैसे बच्चों को तजुर्बात के जरिए न सिर्फ साइंसी उसूल समझाए जा सकते हैं बल्कि उनके अंदर तख्लीक, तजस्सुस और जस्तजू की रूह भी तैयार की जा सकती है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में मौजूद हैं सरकारी स्कूल के एक माहिर टीचर, फिजिकल साइंस के टीचर मुश्ताक अहमद साहब। सर, आपका हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आज हमारे सामीन को आप कौन सा मौजू समझाएंगे?
2: आज जो है हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पर हम लोग जो है आज बात करेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके कंसेप्ट, करंट होता क्या है,

0: और उसमें बहुत सारी बुनियादी जो बातें हैं जो बच्चे जानना चाहते हैं उसके ताल्लुक से हम बात करेंगे।
1: जी बिल्कुल, आज आपने बहुत ही बेहतरीन इंतखाब किया है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके बगैर हमारी जिंदगी तो बिल्कुल बेकार सी लगती है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो फिर हमारा कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाएगा। आज के इस जदीद दौर में करंट इलेक्ट्रिसिटी की बहुत जरूरत है, तो बताएं कि ये क्या है।
0: जी, इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे मौजूदा जो दौर है उसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को बात कर दें तो फिर जिंदगी का तस्वीर भी अधूरा हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल,
0: कि आज जो है अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के बगैर एक मोबाइल भी चार्ज नहीं कर पाएंगे, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हमारे काम जो है ठप पड़ जाए। तो ये बहुत ही अच्छा एक ईजाद है इस दौर जदीद का, जिसमें हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो है वो किस तरीके से, उसके तस्वीरात क्या है जो हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। कि इसको एक तजर्बा के ज़रिए पहले हम ये कोशिश करें समझने की कि इलेक्ट्रिक जो है वो उसके अंदर चार्ज होते हैं।
1: जी हाँ।
0: तो ये दो चार्जेस होते हैं उसके अंदर, पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये चार्ज के बगैर अगर हम, जिसको आम जबान में अगर बच्चों को अगर समझाने की कोशिश की जाए, बच्चे इससे इसको समझने की कोशिश की जाए, तो उसको एक तजर्बा और खेल खेल, जैसे ये एपिसोड का भी नाम है, इस प्रोग्राम का नाम भी है कि खेल खेल में हम बच्चों को साइंस सिखाएं। कि बच्चों को एक रॉड दें, ग्लास का बना हुआ रॉड, जैसे पेन होता वैसे प्रैक्टिकल में होता है बच्चों को, उसको हम एक रेशमी कपड़े लें और उससे रगड़े। तो रगड़ने की सूरत में क्या होगा कि ये सलाख जो है, जो हम ग्लास का लिए हैं, ग्लास रॉड, ये इसके अंदर एक चार्ज क्रिएट होगा, और जिसके अंदर क्या होगी, एक कुवत कशिश पैदा होगी, किसी चीज को अपनी ओर खींचने की कुवत। ये क्या करेगा, अगर हम इसके सामने छोटे छोटे टुकड़े, मान लीजिए कागज के टुकड़े रख दिए, तो इन कागज के टुकड़ों को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ये इसके अंदर ये खिंचाव जो पैदा हुआ ये छड़ के अंदर, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो ताकत दे रही है उसको कि वो किसी चीज को अपनी तरफ, अपनी ओर खींच रहा है। यही चीज का नाम चार्ज है।
1: जी,
0: इसी का नाम चार्ज है। और ये चार्ज दो किस्मों के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसको भी बेहतरीन तरीके से समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के जरिया अगर हम लोग बच्चों को बताएं कि एटम, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या है, कि एटम के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसमें बेसिकली बच्चों को बताया जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
1: जी
0: ठीक है। तो अगर हम लोग और थोड़ा सा एलाबोरेट करें कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब देखते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर दो बुनियादी चीज़ें, दो बुनियादी फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के बाहर एक ऑर्बिट होता है जिसको सेल बोलते हैं। उस सेल में क्या होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते रहते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन की वजह से ही चीजों में पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज का जन्म होता है। अब अगर इसको और एक तजर्बा के जरिए समझने की कोशिश करें कि इसी ग्लास रॉड को ले लें और एक रेशम के कपड़े को ले लें और उसको रगड़े, तो देखेंगे कि ग्लास रॉड में से क्या होगा कि एटमों का, एटम जो है उनके अंदर के इलेक्ट्रॉन आस्ते आस्ते निकल जाते हैं, और उसके ऑपोजिट में क्या होता है कि रेशमी कपड़े धीरे धीरे उन एटमों के निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन है अपने अंदर ले लेते हैं। तो नतीजा में क्या होता है कि ये जो ग्लास रॉड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, और ये जो रेशमी कपड़े होते हैं वो धीरे धीरे पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं।
1: यानी चार्ज एक रिगड़ की वजह से कुछ चार्ज प्रोड्यूस होता है।
0: जी,
1: और वो चार्ज कपड़े में अगर गया तो वो पॉजिटिव हो गया।
0: जी, और वो ग्लास से निकल गया
1: इसलिए वहाँ नेगेटिव।
0: हाँ, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ कि जब निकल गया एटमों को, जब जैसे हम निकाल दिए इलेक्ट्रॉन, निकल कर रेशम के एटमों में चले जाते, तो जिसके सबब से क्या होता है वो सलाख जो है पॉजिटिवली चार्ज हो गया, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो गई, पॉजिटिव प्रोटॉन जितना था उतना ही रह गया, इन कंपेयर टू पॉजिटिव ज्यादा हो गया, नेगेटिव कम हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। और जिसमें इलेक्ट्रॉन खुद चला गया वो उसके इलेक्ट्रॉन की तादाद को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते। तो ये बेसिक फेनोमेना है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के ताल्लुक से बात होती है। इसमें जो अहम बात बच्चों को साइंस के ताल्लुक से है वो ये है कि जो जाने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, इन जाने वाले इलेक्ट्रॉन

0: उनका कुछ नाम है, इनको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं
1: जी।
0: ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, क्योंकि पहले मैंने बताया कि आपको इलेक्ट्रॉन जो है एक शेल और ऑर्बिट पर गर्दिश करते हैं। और जिस ऑर्बिट में सबसे आखिरी ऑर्बिट होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन आखिरी ऑर्बिट को बोलते हैं वैलेंस शेल, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है या इलेक्ट्रॉन जो होती है मौजूद वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है जिनके अंदर ये टेंडेंसी है कि ये जा भी सकते हैं और ये किसी एक दूसरे को ले भी सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे भी चीजें हैं जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं और बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रो नेगेटिव होती हैं। तो जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता, और जो इलेक्ट्रो नेगेटिव होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिक लेने की वजह से नेगेटिविटी आती है और वो नेगेटिव चार्ज में तब्दील हो जाते हैं। तो ये हमारा बेसिक जो है चार्ज के ताल्लुक से बात है। तो चार्ज के ताल्लुक से एक साइंसदान थे कूलम
1: जी,
0: उन्होंने बड़ा अपना एक लॉ दिया, जैसे न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ दिया था उसी तरह चार्ज के ताल्लुक से कूलम से अपना एक लॉ दिया कि अगर दो बॉडी हैं, दोनों बॉडी जो है आपस में कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, दोनों के चार्जेस कुछ है, एक का Q1 है दूसरे का मान लीजिए Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो बताया कि दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स जो होगा वो दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट के बराबर अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, और उन दोनों चार्जेस के जो डिस्टेंस है दूरी है

0: दो चुम्बक ले लिए,
1: हाँ।
0: जितना करीब ले जाएंगे चुम्बक को उतना उसके अंदर पावर
1: जाए। आ जाता है,
0: ठीक है ना। तो जितना करीब आइएगा उतना पावर, और जितना उस चुम्बक को दूर ले जाया जाए
1: तो कम हो जाएगा,
0: वो धीरे धीरे कम होगा। तो उसको अगर इस तरीके से समझाया जाए तो हम लोग बच्चों को इंटरेस्टिंग कर सकते हैं कि भाई यही जो चीज है, ये फोर्स है जो अपने आप में महसूस करेगा बच्चे। जब दो नेगेटिवली या ऑपोजिटली पोलारिटी को ले जाएगा तो बच्चा देखेगा कि क्या हो रहा है कि वो कुवत
1: के जरिए अच्छा बेहतर तरीके से समझा जा सकता है।
0: समझा जा सकता है। अब इसको हमारा जो रोजमर्रा की जिंदगी में ये चार्जेस जो हैं, जैसे अभी हम लोग आम जबान में बोलते हैं मोबाइल का हमारा चार्जर है, तो ये चार्जर जो है ये करता क्या है? ये जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इसका काम होगा। अब ये काम क्या करता है, जैसे ये एनर्जी प्रोवाइड करता है
1: जी,
0: ये क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और ये एनर्जी आपको कई प्रकार से होते हैं, कई तरह के होते हैं, जो डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम इस मोबाइल को ही पकड़ ले, मोबाइल में बैटरी है, इस बैटरी को आपको चार्ज करने के लिए चार्जर चाहिए जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कीजिएगा, है ना। अब इसको कनेक्ट करने पर क्या होगा कि इसमें जो बैटरी है ये बैटरी जो है चार्ज होना शुरू होगा, फिर आपको कुछ वक्त तक जो है वो आपको 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा एक बैकअप देगा। तो ये बैटरी के बारे में बच्चों को समझाना, ये बैटरी कितने तरह की होती है।
1: हाँ, ये बहुत जरूरी है कि बैटरी को समझना, क्योंकि आजकल हर चीज में बैटरी होती है, तकरीबन खिलौनों में बहुत सारी बैटरी होती है, बच्चे जो खेलते भी हैं देखते भी हैं।
0: तो इन बैटरी को अगर हम लोग देखें तो बैटरी जो है दो तरह की है, ये सेल्स जो होते हैं इनको सेल्स भी कहते हैं, SELL सेल। अब इसको बायोलॉजी वाला सेल ना समझा जाए, CELL सेल, ठीक है, CELL सेल, ये सेल है। और एक मैंने शेल की बात की,
1: वो शेल
0: SH ऑर्बिट, तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं इसमें। और एक बायोलॉजी का भी सेल होता है, है ना, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो ये सेल भी कहलाता है, इसीलिए हम लोग मोबाइल को भी सेल बोलते हैं
1: जी,
0: क्योंकि इसके अंदर बैटरी है। ये बैटरी दो तरह का है, एक है प्राइमरी सेल और दूसरा है सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल वो होते हैं जिसको आप ना रिचार्ज नहीं कर पाइएगा, नॉन रिचार्जेबल है, यानी वो आप एक वन शॉट इस्तेमाल की और उसको डिस्कार्ड कर दिया, यूज एंड थ्रो। जैसे हमारा वोल्टाइक सेल हुए, ड्राई सेल है, लैक्लेंचेस सेल, ये तीनों सेल जो है ना, ये ड्राई सेल, लैक्लेंचेस सेल, सिंपल वोल्टाइक सेल, ये सिंपल आपका नॉन रिचार्जेबल होते हैं। और इसको क्या करते हैं, जैसे आम तौर से हम लोग देखिएगा टॉर्च लाइट हुआ, उसमें इस्तेमाल करते, पहले जमाने में रेडियो चला करता था तो वो सेल इस्तेमाल होता था, वो जो था वो सब नॉन रिचार्जेबल
1: प्राइमरी सेल थे,
0: प्राइमरी सेल थे। अब क्या है कि सेकेंडरी सेल भी आ गए, अब सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल होते हैं
1: जी।
0: अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये सेकेंडरी सेल जो रिचार्जेबल है, तो हमारा बैटरी अभी मोबाइल में लगा हुआ है, हम इसको भी रिचार्ज, बहुत सारे बैटरी पेंसिल बैटरी भी अभी मार्केट में अवेलेबल है जिसको हमारा आप रिचार्ज करके अपने इसी रिमोट में या फिर आपका टॉर्च लाइट वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली रिचार्जेबल सेल जो होते हैं वो लिथियम आयन, निकल, कैडमियम और लीड एसिड से बने होते हैं। इनके अंदर ये खासियत है कि ये अपना केमिकल प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। अब क्या है कि बैटरी जो होता है उसको समझना कि बैटरी में एक केमिकल प्रोसेस जो क्या करता है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिसके जरिए से हम आप टॉर्च लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं या घड़ी में हम बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्राइमरी भी हो सेकेंडरी भी हो दोनों हो सकते। लेकिन रिचार्जेबल का क्या होता है कि जब हम फिर उसको करंट से देते हैं तो उसके केमिकल जो एक्टिविटीज है फिर से होने लगते, वो क्या करता है अपने एनर्जी को फिर से रिस्टोर करता है, और रिस्टोर करने पर क्या होता है कि फिर आप उसको दोबारा से आप इस्तेमाल कर सकती हैं
1: जी, तो चार्ज करने के बाद दोबारा इस्तेमाल किया जाता है।
0: तो बच्चे के अंदर ये क्यूरियोसिटी होनी भी चाहिए कि अभी देखिएगा मोबाइल आता है तो बच्चों में या हम सब में ये मतलब ये है कि पूछते हैं कि बैटरी बैकअप कितना है,
1: ये सवाल बहुत जरूरी होता है।
0: तो बैटरी बैकअप कितना है, हम पूछते हैं कि 5000 एमएच का है, 7000 एमएच का, ये एमएएच होता गया है,
1: ये
0: क्या है, ये मिली एम्पेयर आर, इसका फुल फॉर्म होगा मिली एम्पेयर आर। 5000 एमएच बैटरी अगर है तो

0: ये 5000 मिली एम्पेयर बैटरी, ये जितना ज्यादा पावरफुल होगा, जैसे अभी बच्चों के अंदर एक ये भी जस्तजू है कि पावर बैंक खरीदना, 10,000 mAh का, 20,000 mAh का, 30,000 mAh का, तो ये पावर बैकअप ही के तौर पर ये बैटरियां जो हैं, ये बैटरी जितना पावरफुल होगा उतना ज्यादा देर तक आपको वो कारगर होगा, उतने ज्यादा देर तक आपके मोबाइल को, आपको सेल को वो बैकअप दे पाएगा। तो ये मिली एम्पेयर आर ये क्या है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज कैपेसिटी का यूनिट है, ठीक है। ये आज का टॉपिक जो रहा, तो इसमें हम लोग बैटरी के ताल्लुक से भी पढ़े और करंट इलेक्ट्रिसिटी के ताल्लुक से भी जो बुनियादी बातें हैं बच्चों के ताल्लुक से उसमें हम लोग पढ़े।
1: जी बिल्कुल, आपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से और बैटरी का एग्जांपल देकर बच्चों को समझाया है। आपने हमारे सामीन को बहुत बेहतरीन तरीके से सब कुछ एग्जांपल मिसालें दी हैं। आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत शुक्रिया आपका भी।

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। समय हो चुका है दैनिक पत्रिका कार्यक्रम सुरभि की। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आपकी होस्ट पूजा, लेकर कार्यक्रम सुरभि। और सुरभि का जो पहला पायदान है चर्चा है, उसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स की। इस दिन को प्रतिवर्ष 29 मई को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है शांति सैनिकों के योगदान, साहस, समर्पण और बलिदान को सम्मान देना, साथ ही उन शांति सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करना जिन्होंने विश्व शांति स्थापित करने के प्रयास में अपने प्राणों का बलिदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने पहला शांति मिशन वर्ष 1948 में मध्य पूर्व में शुरू किया था। तब से लेकर आज तक विश्व के अनेक संघर्ष ग्रस्त क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक शांति और स्थिरता स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। इन सैनिकों का मुख्य उद्देश्य युद्ध विराम की निगरानी करना, नागरिकों की सुरक्षा करना, मानवीय सहायता पहुंचाना तथा संघर्षरत पक्षों के बीच विश्वास बहाल करना है। यूएन पीस कीपर्स केवल सैनिक ही नहीं होते, बल्कि इनमें पुलिस अधिकारी, चिकित्सक, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी और अन्य विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। ये लोग देशों से आकर एक साझा उद्देश्य विश्व शांति के लिए कार्य करते हैं। बात करें अगर उनके मुख्य भूमिकाओं की, तो युद्ध विराम समझौतों की निगरानी करना, नागरिकों को हिंसा और संघर्ष से बचाना, चुनावों के संचालन में सहायता देना, कानून व्यवस्था स्थापित करना, आपदा और मानवीय संकट के समय राहत पहुंचाना, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना इनके कार्य क्षेत्र में आता है।

भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सबसे बड़े और विश्वसनीय योगदानकर्ताओं में से एक रहा है। भारत ने अब तक लाखों सैनिकों, पुलिस कर्मियों और चिकित्सा दलों को विभिन्न शांति मिशनों पर भेजा है। भारतीय शांति सैनिकों ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, साउथ सूडान, लेबनान, सीरिया और कई अन्य देशों में उत्कृष्ट सेवा प्रदान की है। भारतीय सैनिकों की निष्पक्षता, मानवता और साहस की विश्व भर में सराहना की जाती है। उदाहरण के लिए, कांगो में भारतीय सैनिकों ने न केवल शांति स्थापित करने का कार्य किया, बल्कि स्थानीय लोगों को चिकित्सा सहायता, शिक्षा और अन्य आवश्यक सेवाएं भी प्रदान की। यूएन पीस कीपर्स को अत्यंत कठिन परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है। उन्हें अक्सर हिंसागत ग्रस्त क्षेत्रों, राजनीतिक अस्थिरता वाले देशों तथा प्राकृतिक कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। कई बार उन्हें अपने जीवन को जोखिम में डालकर निर्दोष लोगों की रक्षा करनी पड़ती है। आज तक हजारों शांति सैनिक विश्व शांति की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बलि दे चुके हैं। उनका यह त्याग मानवता के प्रति सर्वोच्च समर्पण का प्रतीक है। वर्तमान समय में विश्व अनेक भागों में युद्ध, आतंकवाद, जातीय संघर्ष और मानवीय संकट से जूझ रहा है। ऐसे समय में यूएन पीस कीपर्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। वे केवल संघर्ष रोकने का ही कार्य नहीं करते, बल्कि शांति, विकास और स्थायी स्थिरता की नींव भी रखते हैं। जब भी किसी क्षेत्र में शांति स्थापित होती है, तब वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास के नए अवसर पैदा होते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे वैश्विक शांति दूत हैं, ये विश्व को एक बेहतर और सुरक्षित स्थान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स हमें याद दिलाता है कि विश्व शांति केवल सरकारों या सेनाओं की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह पूरी मानवता का साझा दायित्व है। सुरभि की पहली कड़ी चर्चा है के अंतर्गत आज हमने बात की इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स की।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: कार्यक्रम सुरभि की अगली कड़ी।

पहल। पहल के अंतर्गत आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम वर्ष 2020, यानी कि द नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी एक्ट 2020 की। भारत में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति लंबे समय से प्रचलित है और लाखों लोग इसके माध्यम से उपचार प्राप्त करते हैं। समय के साथ चिकित्सा शिक्षा, संस्थानों की गुणवत्ता, चिकित्सकों के पंजीकरण तथा पारदर्शिता की आवश्यकता बढ़ी और इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम 2020 लागू किया। इस अधिनियम ने पूर्व में कार्यरत केंद्रीय होम्योपैथी परिषद का स्थान लेकर एक नई और अधिक उत्तरदायी व्यवस्था स्थापित की। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों के तहत सरकार ने चिकित्सा शिक्षा को अधिक पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और जवाबदेह बनाने का प्रयास किया। यह महसूस किया कि होम्योपैथी शिक्षा और नियमन के लिए कार्यरत पुरानी व्यवस्था में अनेक कमियां थीं, जैसे कि शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता, संस्थानों की निगरानी में कठिनाई, चिकित्सकों के पंजीकरण की समस्याएं और आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप सुधारों की आवश्यकता। इन चुनौतियों के समाधान हेतु संसद ने राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम 2020 पारित किया और इस अधिनियम के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो है होम्योपैथिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, चिकित्सा संस्थानों के मानकों को निर्धारण करना, चिकित्सकों के पंजीकरण की एक समान व्यवस्था कर देना और चिकित्सा शिक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करना, होम्योपैथी अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना, रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन अधिनियम की धारा 3 के अनुसार केंद्र सरकार एक निकाय का गठन करती है जिसे राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग कहा जाता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आयोग को एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। अधिनियम की धारा 4 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष, 7 पदेन सदस्य यानी एक चेयरपर्सन और 7 ऑफिस मेंबर, एग्जीक्यूटिव ऑफिस मेंबर, 19 अंशकालिक सदस्य यानी कि पार्ट टाइम मेंबर्स की संख्या होगी 19 शामिल होते हैं और अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास होम्योपैथिक क्षेत्र में व्यापक अनुभव हो, प्रशासनिक क्षमता हो और उत्कृष्ट प्रतिष्ठा हो। यह एक ऑटोनोमस बोर्ड है यानी कि स्वायत्त बोर्ड है और इस अधिनियम के अंतर्गत 3 प्रमुख स्वायत्त बोर्ड गठित किए गए हैं, होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड, चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड और नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड। अधिनियम के अंतर्गत सलाहकार परिषद का भी गठन किया गया और इसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ तथा अन्य संबंधित सदस्य शामिल होते हैं। इनका उद्देश्य आयोग को विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव एवं परामर्श प्रदान करना होता है। अधिनियम ने चिकित्सा शिक्षा को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए कई राष्ट्रीय परीक्षाओं का प्रावधान किया है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट, होम्योपैथी स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट को आधार बनाया गया है। राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट, शिक्षा पूर्ण करने के बाद चिकित्सक के रूप में पंजीकरण प्राप्त करने हेतु यह परीक्षा आयोजित की जा सकती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी स्नातकों का न्यूनतम ज्ञान स्तर समान हो। स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होम्योपैथिक शिक्षकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु यह व्यवस्था भी की गई है। बात करें अगर इस अधिनियम के अस्तित्व में आने से आने वाले सुधारों की, होने वाले लाभ की, तो शिक्षा की गुणवत्ता में जाहिर सी बात है कि सुधार होगा। सभी संस्थानों के लिए समान मानक निर्धारित होने से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। कॉलेजों की रेटिंग और नियमित मूल्यांकन से पारदर्शिता आएगी। राष्ट्रीय परीक्षाओं के माध्यम से योग्य शिक्षकों का चयन

होगा तो बेहतर चिकित्सक सामने आएंगे। नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड चिकित्सकों के आचरण पर निगरानी रखेगा तो रोगी के हितों की रक्षा भी होगी। आयोग नई तकनीकों और शोध को प्रोत्साहित करेगा जिससे अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। यद्यपि यह अधिनियम सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, फिर भी चुनौतियां आज भी बनी हैं। सभी राज्यों में समान रूप से कार्यान्वयन एक बड़ी चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत सुधार चुनौतियों की श्रेणी की अगली कड़ी है। शिक्षकों और संसाधनों की उपलब्धता, डिजिटल एवं तकनीकी अवसंचारना का विकास, पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच संतुलन, ये सभी चुनौतियां आज भी बरकरार हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि समय के साथ साथ इनका भी निस्तारण निवारण होगा। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम 2020 भारत में होम्योपैथी शिक्षा और अभ्यास को आधुनिक, पारदर्शिता तथा उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विधिक सुधार है। यह अधिनियम केवल संसाधनों के नियमन तक सीमित नहीं, बल्कि चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता, चिकित्सकों की योग्यता, नैतिक आचरण और रोगी कल्याण को भी केंद्र में रखता है। तो यह कहा जा सकता है कि भारत में होम्योपैथी प्रणाली को अधिक विश्वसनीय, वैज्ञानिक और जनोपयोगी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग अधिनियम 2020, जिसकी हमने बात की आज पहल के अंतर्गत। कार्यक्रम सुरभि, जिसे आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर, आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता चैनल पर, यहीं तक। आज्ञा दीजिए अपनी दोस्त, अपनी होस्ट पूजा को चलते चलते आप सभी के लिए छोड़े चलूंगी इस गीत को। सुनते रहें, साथ बने रहें। अगला कार्यक्रम जिसे हम सुनेंगे इस गीत के उस पार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को समझौता ज्ञापन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
1: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य से

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूं।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
0: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी,
0: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
2: गांव ढाणे कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
0: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
2: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
0: जी, ये बात तो है।
2: श्रोताओ, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
0: जी हाँ, जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
2: जी,
0: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, अब एक खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
2: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
0: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
2: जी,
0: गुलाब की कई प्रजातियाँ चीन से ही विकसित हुई है और धीरे धीरे ये प्रजातियाँ पूरी दुनिया में फैल गई।
2: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
0: काले गुलाब?
2: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
0: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
2: जी,
0: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
2: जी,
0: वास्तव में यह काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
2: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब हो

0: ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
1: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है
0: जी।
1: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
0: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
1: जी वो तो है।
0: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
1: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है
0: जी।
1: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
0: बिल्कुल।
1: आइए अब बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
0: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है। जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का
1: जी,
0: पीला गुलाब मित्रता का, और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
1: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते
0: जी,
1: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं।
0: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं, ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
1: जी तो श्रोताओ, ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं।
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम खेल संध्या और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे के जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूं।

0: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
1: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
0: पच्चीस जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
1: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा। हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना। ओके।
1: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
0: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
5: धन्यवाद श्रीमान।
4: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
5: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
4: वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
5: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
4: बेस्ट ऑफ लक।
1: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
0: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
1: युद्ध शुरू हो चुका था।

लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना।

0: पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
1: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सबने जबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
2: जी, हम तैयार हैं।
1: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
3: वो क्या साहब?
1: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है, यह है नंबर 1 और यह है नंबर 2।
3: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
1: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायु सेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
2: जी साहब।
1: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
2: जय महाकाली, आयो गोरखाली, जय महाकाली, आयो गोरखाली।
1: तो शुरू करते हैं अभियान, सब तैयार हो जाओ। शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
2: जय महाकाली, आयो गोरखाली।
0: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
4: मार्ग दुर्गम था, खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
0: आक्रमण हुआ
4: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।

0: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
2: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।

0: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के दो बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो तीसरे बंकर की ओर बढ़ने लगे।
1: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
0: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और तीसरे बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
1: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के चौथे बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो चौथे बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
2: ना छोड़नु, ना छोड़नु।
0: जिसका अर्थ है, उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
0: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
0: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
3: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर एस रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।

0: measures, strict action against examination mafias, and protection for deserving students. PM Surya Ghar scheme achieves major milestone as 40 lakh households embrace rooftop solar. IMD predicts below normal monsoon rainfall in the country and above normal heatwave conditions in several states during June. And Indian sprinter Neepam wins bronze in women's 100 meter at Under 20 Asian Athletics Championships in Hong Kong. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
3: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
1: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के दो दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन

0: इंटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
1: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं, एजुकेशन में, आईआईटी, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन यार ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्र यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुस जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी

0: ईरान एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। IPL क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে মিডিয়াম ওয়েভ 294.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে। এখন শুনবেন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে তবলা লহরা, তাল রূপক শিল্পী সমীর চট্টোপাধ্যায়, শিল্পীকে হারমোনিয়ামে সহযোগিতা করেছেন সনাতন গোস্বামী।

0: আকাশবাণী কলকাতা, শুরু হলো সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গের দ্বিতীয় অধিবেশনের অনুষ্ঠান। স্টুডিওর ঘড়িতে এখন সময় বিকেল 4:59 হয়ে 44 সেকেন্ড। অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে মিডিয়াম ওয়েভে 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে। এখন সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে প্রিয়াঙ্কা অরোড়া। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। न्यायालय की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने

0: नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि विद्यार्थियों के विश्वास को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस हुरमुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता है। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। श्री बघेल ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हर एक तक सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि PM सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी समझौते के प्रति वचनबद्धता दोहराई। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91.97 लाख करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 192 अंक गिरकर 74,776 पर बंद हुआ। निफ्टी 359 अंक गिरकर 23,548 पर दर्ज हुआ। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Supreme Court today directed all high courts across the country to pronounce judgments within 3 months of reserving them. The Apex Court also noted that delays in the delivery of judgments can cause irreparable harm to litigants, emphasizing that faster decisions are required in cases of personal liberty. A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justice Joy Mallya Bagchi said that orders in bail applications should be pronounced the same day, and if they are reserved, they must be pronounced and uploaded the next day. Issuing a slew of directions, the top court said that order of bail or sentence suspension should be communicated to the jail authorities as soon as it is pronounced, and the under trial convict should be released preferably the same day or at most the next day. The Supreme Court today stressed accountability for the lapses in the NEET paper leak case. A bench of Justices P.S. Narasimha and Alok Arade was

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है। शाम के 5:20:37 आपकी दोस्त सविता सभी दोस्तों का स्वागत करती है कार्यक्रम उर्वशी में। जी हाँ, उर्वशी में आज हम चलेंगे लेकर आपको कार्यक्रम सुरुचि में लजीज व्यंजनों से बने कुछ स्वादिष्ट पकवानों के बारे में। हम आपको रेसिपी देंगे ताकि इस गर्मी में, उमस भरे दिनों में आप उनका आनंद उठा सकें। हालांकि आज हो गई है बारिश और बारिश में मन और मिजाज थोड़ा सा गर्मी की उमस से सुकून की ओर।

जी हाँ दोस्तों, शाम का वक्त है और यूं बारिश भी छमाछम शहर में बरस रही है, तो मन और मिजाज तो कुछ कुछ सुनने और छनकने की ओर बढ़ ही चुका है। लेकिन ऐसे में यदि हम कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी सुन लें, उनकी विधि जान लें, तो ऑफकोर्स गर्मी तो 2 दिन बाद फिर पड़ने वाली है, तो हम बना करके अपने मन और मिजाज के साथ शरीर को भी तरोताज़ा कर ही सकेंगे। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम सुरुचि की ओर। गर्मियों में ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, सभी कहते हैं, कि जो आसानी से पच जाए और शरीर को हाइड्रेट रखे, ठंडा रखे, जिसमें दही है, छाछ, खीरा, ककड़ी, मौसमी फल और दुनिया के और बहुत से आहार शामिल होते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर को जो ठंडा रखते हैं और स्वस्थ रखते हैं, उसके साथ कम वसा वाले ठंडे प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। उबले अंडे, टूना सलाद, सैल्मन सलाद और कोल्ड श्रिम्प सलाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने भरपूर प्रोटीन के लिए दालों से बने सलाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब आसानी से पचाने योग्य होते हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको बताएंगे कि आम रस कैसे बनाया जाता है, क्योंकि आमों का, जी हाँ, सीजन है, मौसम है और ऐसे में अलग अलग वैरायटी के आम आते हैं मार्केट में, और हम सभी ये चाहते हैं कि आम से बने कुछ ऐसे चीज़ें बनाई जा सकें जो कि परिवार में सबको पसंद हो। तो आइए बता देते हैं आम रस कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले दोस्तों आपको बताएं कि सामग्री क्या क्या चाहिए। पके हुए आम 3 या 4 बिना रेशे वाले, चीनी 2 से 3 चम्मच, आम की मिठास के अनुसार। यदि आम खट्टे हैं तो चीनी लगेगी ज़्यादा और यदि मीठे हैं तो चीनी कम लगेगी। जी हाँ, दूध या पानी से आप बना सकते हैं आम रस, तो ये आपकी सुविधा के अनुसार है। आप पूरा के पूरा आम रखने वाले हैं और पानी थोड़ा सा डालकर अमरस बना सकते हैं, या फिर आप उसको बना सकते हैं दूध के साथ साथ में इलायची पाउडर 1/2 चम्मच। आपके लिए ऑप्शनल है, यानी वैकल्पिक है ये, कि केसर की 4-5 आप धागे उसमें डाल सकते हैं, यानी केसर डाल सकते हैं थोड़ी सी, और थोड़ा सा यदि गुजराती स्टाइल का टच देना चाहते हैं तो सौंठ भी डाल सकते हैं। अब आपको बता देते हैं हम बनाने की विधि। तो दोस्तों, आम को अच्छी तरह से धो लें। अब इन्हें छील कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और गुठलियों का सारा गूदा निकाल लें। फिर उनको मिक्सी में डाल करके आम के टुकड़ों को ब्लेंडर में जार में पीस लें। चीनी भी साथ में डाल दें। साथ में यदि बाद में आप चाहें तो उसमें केसर और इलायची पाउडर डाल सकते हैं। मिक्सी को चला करके आम को एक चिकना और गाढ़ा पेस्ट बना लेना है, और ये यदि ज़्यादा गाढ़ा लगे तो उसमें थोड़ा सा दूध या फिर पानी डालकर चला सकते हैं। इसमें ठंडा करने के लिए बर्फ़ के जो टुकड़े हैं, आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं, या फिर आप यदि आइस क्यूब से बचना चाहते हैं, क्योंकि किसी किसी को थोड़ी थोड़ी गले में ठंड लग जाती है और सर्दी का असर हो जाता है, तो आप उसको फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख कर ठंडा कर सकते हैं और फिर एक सर्विंग बाउल में या फिर ग्लास में आप सर्व कर सकते हैं। आम रस को और ज़्यादा रिच बनाने के लिए काजू बादाम के छोटे छोटे टुकड़े काट कर भी डाल सकते हैं, ये आपको और ज़्यादा एनर्जी भी देगा। तो दोस्तों, ये थे आमरस बनाने का स्टाइल, जो महाराष्ट्रियन स्टाइल में भी आपको हम बता दें कि इसमें लोग इलायची पाउडर डाल देते हैं और

यदि आप गुजराती आमरस बनाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा सौंठ पाउडर डाल सकते हैं और ऊपर से थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं। ये सब अलग अलग स्टाइल से अलग अलग स्वादिष्ट स्वाद बनाने के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आमरस बनाने की ये सबसे आसान और पारंपरिक विधि थी जो हमने आपके साथ की साझा। जी हाँ दोस्तों, पहले सुनते हैं एक और गीत और उसके बाद हम आपको खट्टी मीठी आम की चटनी भी कैसे बनाते हैं वो भी बताने वाले हैं, लेकिन फिलहाल तो नसीब फिल्म का ये गीत आपके लिए।

जी हाँ दोस्तों, आपने ये गीत सुना फिल्म नसीब से लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उर्वशी और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सविता। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए एक खास सूचना, 136वीं डाक अदालत, आइए आपके साथ करते हैं हम साझा। मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 17/6/2026 को पूर्वाहन 11:30 पर मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगा योग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 में गूगल मीट के माध्यम से 136वीं डाक अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संपूर्ण ब्यौरा जैसे कि संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकरणों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री SC दास, सहायक निदेशक डाक सेवा, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 के नाम भेजी जाए और यह डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@theindiapost.gov.in adpgcowb@gmail.com या pg.wb@theindiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 1/6/2026 तक या इसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332121205 0332121206122332105 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत के आवेदन पर डाक अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। 136वीं डाक अदालत सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उर्वशी। उर्वशी के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, आज सुरुचि यानी स्वादिष्ट व्यंजनों पर आधारित कार्यक्रम सुरुचि हम पेश कर रहे हैं। आपको सुनवाएंगे हम पहले एक गीत और उसके बाद हम खट्टे मीठे आम से बनी चटनी कैसे बनाई जाती है आपको देंगे इसकी विधि।

फिल्म जुदाई का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। आइए दोस्तों बढ़ते हैं सुरुचि की ओर। जी हाँ, कच्चे आम से बनी खट्टी मीठी चटनी कैसे बनाई जाती है। गर्मियों में ये स्वादिष्ट और बेहतरीन ताज़ा डिश होती है जिसे आप झटपट बना सकते हैं और पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, दाल चावल के साथ इसे खाने में अच्छी लगती है। तो आइए आपके साथ साझा करते हैं हम ये झटपट बनाने वाली विधि, कच्चे आम की बनी खट्टी मीठी आम की चटनी। इसके लिए सामग्री है कच्चा आम, जिसे हम कैरी भी कहते हैं, 500 ग्राम छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें। चीनी या गुड़ 250 से 300 ग्राम दोनों बराबर ले सकते हैं। और तेल एक बड़ा चम्मच, सरसों का तेल, तड़के के लिए आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच सौंफ और थोड़ी सी कलौंजी। मसाले चाहिए इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और नमक, पानी एक कप। दोस्तों इसकी बनाने की विधि आपके साथ साझा कर लेते हैं। एक पैन या कढ़ाई में तेल गरम करें। जब तेल गरम हो जाए तो उसमें जीरा, सौंफ, कलौंजी डाल देंगे। अब कटे हुए आम के टुकड़े डालकर 2 मिनट भून लेंगे। फिर इसमें हल्दी, लाल मिर्च और नमक डाल के सब अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद एक कप पानी डालें, पैन को ढक दें और आम के नरम होने तक 3 से 4 मिनट तक पकाएं। जब आम गल जाएं तो उसमें चीनी या गुड़ डालें। इसे धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक चाशनी गाढ़ी ना हो जाए। और अंत में गरम मसाला डालें, आंच बंद कर लें। आपकी स्वादिष्ट खट्टी मीठी चटनी तैयार है। ये एक पारंपरिक और झटपट बनने वाली आसान सी चटनी है जिसे आसानी से बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी खट्टे मीठे आम की चटनी। दोस्तों आपको 2 कच्चे आम और आधा कप चीनी या गुड़, छोटा काला नमक और भुना जीरा, मुट्ठी भर दाने पुदीने के पत्ते के और 4 कप पानी, ये आपको बता देते हैं हम कच्चे आम से बना आम पना। बिल्कुल दोस्तों, आम को उबाल लें और इसका गूदा निकाल लें। इस गूदे में चीनी, काला नमक, जीरा पाउडर, पुदीने के पत्ते डालकर मिक्सी में पीस लें और इस मिश्रण को पानी में मिला लें और बर्फ डालें। बस दोपहर के समय यदि इसे पिया जाए तो लू नहीं लगती और शरीर भी पानी की कमी से हमारा हाइड्रेट नहीं होता, तो इसको हम अच्छे से डिहाइड्रेट नहीं होता ये हमारा शरीर, तो इसको हाइड्रेट करने के लिए हम आम का पना पी सकते हैं। तो दोस्तों 2 कच्चे आम से इसे आराम से बनाया जा सकता है। यदि आप इसमें चीनी डालने से बचना चाहते हैं तो भी नहीं डाल सकते। खाली जीरा पाउडर, पुदीना पत्ता और कच्चा आम डाल करके आम पना बना सकते हैं। ये काफ़ी स्वादिष्ट होने के साथ साथ काफ़ी स्वास्थ्य वर्धक भी होता है। तो सुरुचि में आज हमने आम से बनी कुछ रेसिपी थी जो आपके साथ साझा की। और आइए अब हम आपके साथ एक और गीत सुनेंगे फिल्म मुक्ति से मुकेश की आवाज़ में। गीतकार हैं इसके, जी हाँ दोस्तों, गीतकार इसके हैं आनंद बख्शी और संगीतबद्ध किया है राहुल देव बर्मन ने।

दोस्तों मुक्ति फिल्म के इस गीत के साथ ही आपकी दोस्त सविता उर्वशी कार्यक्रम में अब आपसे चाहती है इजाजत। मुलाकात होगी 6:10 पर हिंदी वार्ता कार्यक्रम में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। यह आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्वशी सविता के साथ।

0: Kokon, aged about 55 years, slim build, height 5 feet 3 inches, color of skin sallow, mother tongue Bengali, is missing since 23rd of February 2020 from Shamiji Nagar, post office Gauranga Nagar, district North 24 Parganas. Special Superintendent of Police, Missing Persons Bureau, CID West Bengal Police, Bhavani Bhavan, Alipur, Kolkata 27, informs that Arpita Mondol, aged about 15 years, healthy built, height 4 feet 11 inches, color of skin sallow, mother tongue Bengali, is missing since 13th of May 2026 from Akra Krishnanagar Police Station Mahesh Tala, District South 24 Parganas. Mohammed Akbar Ali, from village Dakat Pota, Post Office Baidyapur, Police Station Shashan, District North 24 Parganas, informs that Sohana Nargis, aged about 16 years, normal built, height 5 feet, color of skin sallow, mother tongue Bengali, is missing since 12th of April 2026. Ali Buddin, from village Chakaminpur, Post Office Sondalia, Police Station Shashan, District North 24 Parganas, informs that Simran Parveen, aged about 16 years, slim built, height 5 feet, color of skin sallow, mother tongue Bengali, is missing since 17th of April 2026. Informations regarding all the lost persons may be intimated to the officer in charge, Missing Persons Bureau, CID West Bengal Police, Bhavani Bhavan, Alipur, Kolkata 27, or Missing Persons Squad, Detective Department, Kolkata Police, Lal Bazar, Kolkata 1. Local forecast for Kolkata. Generally cloudy sky, becoming partly cloudy sky, possibility of light rain towards evening, maximum and minimum temperatures most likely to be around 32 degrees Celsius and 22 degrees Celsius respectively, maximum temperature 34.8 degrees Celsius, which is 0.3 degrees below normal, and minimum temperature 28.2 degrees Celsius, which is 1 degree above normal, maximum relative humidity 98%, minimum relative humidity 62%. There has been 40.5 millimeters of rainfall in the last 24 hours. Weather warning for fishermen for West Bengal due to squally wind with wind speed reaching 40 to 50 kilometers per hour occasionally and gusting to 60 kilometers per hour is likely to prevail along and off West Bengal and North Orissa coast on today, that is 29th of May 2026. Fishermen are advised not to venture into the sea along and off West Bengal and North Orissa coast. Some of the programs that will come up for you during the evening transmission. At 10 minutes past 6 p.m., Hindi program Varta by Savita Poddar. At 8 p.m., film music. At 16 minutes past 9 p.m., spotlight. At 10:30 p.m., Western music from me to you, presenter Pratigya Ghosh. At 10 minutes past 11 p.m., Hindi film songs. You are tuned into the Sanchaita channel of Akashwani Kolkata.
1: Namaskar. Akashwani Samachar ke saath, main Priyanka Arora. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में संरचनात्मक परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत नागरिकों, प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तथा सेना के सहयोग से पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 270,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून

0: तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने रीनीट की घोषणा किया है, वो रीनीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: श्री प्रधान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि CBI इस मामले की पूरी जाँच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिल्ली में 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट अकादमी की शुरुआत की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि यह अकादमी 5 मुख्य क्षेत्रों पर काम करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हिलाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Union Home Minister Amit Shah has said securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops and public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat today. The minister said the central government is leveraging cutting-edge technology including drones, radars and modern fencing to establish an unbreachable leak-proof security grid. The Home Minister announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan today said that a national seed reserve of 1,74,000 quintals has been established to ensure the seed availability to the farmers. Addressing media on the second day of National Conference on Agriculture for Kharif Campaign 2026 in New Delhi, Mr. Chauhan said that 9,76,000 farmer IDs have been created so far. He said that the farmers will no longer need separate documents to access different schemes. Mr. Chauhan stressed the need for transparency in fertilizer distribution, prevention of black marketing, and ensuring proper supply to genuine farmers. He said that the government remains committed to protecting farmers' interests and ensuring that fertilizers are utilized solely for

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है। शाम के 6:10:43 आपकी दोस्त सविता पोद्दार हिंदी वार्ता में सभी का करती है स्वागत। दोस्तों आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा स्थापना की गए दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा दिवस पर आज हम बात करते हैं हिंदी वार्ता में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ की गई थी। अपनी स्थापना के बाद से संयुक्त

राष्ट्र शांति रक्षा संघर्ष से शांति की और चुनौतीपूर्ण मार्ग पर देशों को मार्गदर्शन देने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। भारत वैश्विक शांति और सुरक्षा में एक प्रमुख योगदानकर्ता रहा है, जिसके 2,90,000 से अधिक शांति रक्षक 50 से अधिक संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवा दे रहे हैं। वर्तमान में 5,000 से अधिक भारतीय शांति रक्षक 9 सक्रिय मिशनों में तैनात हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों को ब्लू हेलमेट के नाम से जाना जाता है। इसका नाम संयुक्त राष्ट्र के ध्वज के हल्के नीले रंग से लिया गया है। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने इस रंग को चुना क्योंकि नीला रंग शांति का प्रतीक है, जबकि लाल रंग अक्सर युद्ध से जुड़ा होता है। तब से यह हल्का नीला रंग संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक बन गया है। ২০২৩ में भारत को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च शांति रक्षा सम्मान डैम हेमरस्क जोल्ड पदक पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो भारतीय शांति रक्षकों शिशुपाल सिंह और सनवाला राम वैष्णोई और नागरिक संयुक्त राष्ट्र कार्यकर्ता शावेर ताहिर अली को कांगो लोकतांत्रिक गणतंत्र गणराज्य में उनके बलिदान के मरणोपरांत प्रदान किया गया। 2025 को संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा केंद्र के ने नई दिल्ली के मानिकशॉ केंद्र में वैश्विक दक्षिण की महिला शांति रक्षकों पर सम्मेलन आयोजित किया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में 35 देशों के महिला शांति रक्षकों ने भाग लिया और शांति रक्षा अभियानों में महिलाओं की बदलती भूमिका और उनकी भागीदारी बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा की। सम्मेलन में लैंगिक समानता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और समावेशी एवं प्रभावी शांति रक्षा अभियानों को बढ़ावा देने में भारत के नेतृत्व पर बल दिया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा क्या है, आइए इस पर हम एक प्रकाश डालें। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख तंत्र है। यह संघर्ष निवारण, शांति स्थापना, शांति प्रवर्तन और शांति निर्माण सहित अन्य संयुक्त राष्ट्र प्रयासों के साथ मिलकर काम करता है। संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा मिशन युद्ध विराम और शांति समझौतों का समर्थन करने के लिए तैनात किए जाते हैं। हालांकि आधुनिक शांति रक्षा एक बहुआयामी प्रयास के रूप में विकसित हो चुकी है, जो सैन्य उपस्थिति से आगे जाती है। हालांकि आधुनिक शांति रक्षा एक ऐसी संस्था है जिसमें विभिन्न प्रकार की विकास किए गए हैं। राजनीतिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाना, नागरिकों को सुरक्षा देना, निरस्तीकरण, विमुद्रीकरण और पुनर्एकीकरण, चुनाव संबंधी सहायता देना, मानवाधिकार और विधि का शासन देना, शांति रक्षा की भूमिका है आज के दौर में कि यह शांति की स्थापना के लिए अक्सर काम करते हैं। इनके संघर्षों से निपटने में लचीलेपन की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से शांति बनाए रखने के लिए तैनात किए जाने के बावजूद शांति रक्षक संघर्ष समाधान और प्रारंभिक पुनर्प्राप्ति प्रयासों में भी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। कुछ मामलों में उन्हें नागरिकों की सुरक्षा, आदेशों को लागू करने और मेजबान राज्य की अक्षमता की स्थिति में सुरक्षा बनाए रखने के लिए बल प्रयोग करने का अधिकार होता है। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा का इतिहास यदि हम आपके साथ साझा करें तो दोस्तों ये इस प्रकार से है कि संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियान की शुरुआत 1948 में मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम पर्यवेक्षण संगठन की स्थापना के साथ हुई, जिसका उद्देश्य युद्ध विरामों की निगरानी करना था।
आरंभ में शांति रक्षा अभियान निहत्ते थे और उनका ध्यान अवलोकन और मध्यस्थ

पर केंद्रित था। शीत युद्ध के दौरान भू राजनीतिक तनावों के कारण अभियान सीमित रहे, लेकिन 1990 के दशक में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद शांति रक्षा अभियानों की संख्या और दायरे दोनों में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने बहुआयामी अभियान शुरू किए जिसमें सैन्य, राजनीतिक और मानवीय प्रयासों का संयोजन था। समय के साथ शांति रक्षा कार्यों का दायरा विकसित हुआ और इसमें राष्ट्र निर्माण, चुनावी सहायता और हिंसक उग्रवाद का मुकाबला जैसे जटिल कार्य शामिल हो गए। रवांडा और बोस्निया में मिशन की विफलताओं जैसी चुनौतियों ने सुधारों को प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मी रिपोर्ट आई, जिसके मजबूत जनादेश और बेहतर संसाधनों पर जोर दिया गया। रक्षा की जिम्मेदारी सिद्धांत ने हस्तक्षेपों को अधिक शादी, जबकि आधुनिक मिशन तेजी से नागरिक सुरक्षा, लैंगिक समावेशन और क्षेत्रीय साझेदारी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आज संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अपने पारंपरिक कार्यों और उभरते वैश्विक सुरक्षा खतरों के बीच संतुलन बनाते हुए लगातार अनुकूलन कार्य कर रही है। भारत का भी संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा में महत्वपूर्ण और एक लंबा गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसकी शुरुआत 1953 में कोरिया से संयुक्त राष्ट्र के अभियान में उसकी भागीदारी से हुई थी। भारत की अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता जो उसके दर्शन में निहित है और महात्मा गांधी द्वारा समर्थित है, वैश्विक शांति को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह प्रतिबद्धता भारत के प्राचीन सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम यानी संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है से उपजी है, जो मानवता की परस्पर संबद्धता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के महत्व पर बल देती है।

0: दोस्तों, अभी हमने बात की हिंदी वार्ता में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की। ये आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है। अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा। मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त सविता। छह बजकर 30 मिनट पर गुलगुलशन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत। सर्वोच्च न्यायालयेन सम्पूर्णे देशे सर्वेषाम् उच्च न्यायालयानां कृते निर्देशः प्रदत्तः यत् आरक्षित निर्णयाः त्रिमासाभ्यन्तरे एव प्रदातव्यम्। सर्वोच्च न्यायालयेन उक्तं यत् निर्णय घोषणायां विलम्बः वादिनां कृते अपरिवर्तनीयां हानिं जनयितुं शक्नुवन्ति। व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य सम्बद्धेषु प्रकरणेषु शीघ्र निर्णयस्य आवश्यकतायाः उपरि बलं प्रदत्तम्। मुख्य न्यायाधीशः सूर्यकान्तः तथा न्यायाधीशः जायमाल्या बागची इत्येतयोः पीठेन उक्तं यत् प्रतिभूत्याः आवेदनविषये निर्णयः तस्मिन्नेव दिने घोषणीयः। यदि निर्णयम् आरक्षितं भवति तर्हि तत् अग्रिमदिने एव प्रकाशितं भवेत्। सर्वोच्च न्यायालयेन अन्येपि अनेकाः निर्देशाः प्रदत्ताः। न्यायालयेन उक्तं यत् बन्धनमुक्तेः अथवा दण्डस्थगनस्य आदेशः निर्णय घोषणानन्तरं त्वरितं कारागृह प्राधिकारिभ्यः प्रेषणीयः। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अद्य उक्तवान यत् प्रश्नपत्र लीक प्रकरणम् अतीव दुर्भाग्यपूर्णम् आसीत्। डीडी न्यूज इत्यनेन सह विशेष संवादे श्री प्रधान आश्वासितवान यत् पुनः परीक्षायाः प्रक्रिया सम्यक् व्यवस्थित रूपेण विना कस्यापि दोषेन च सम्पन्ना भविष्यति।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो,

मीडिया में 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है। शाम के 6:30:17 आपकी दोस्त सविता सभी दोस्तों का स्वागत करती है कार्यक्रम गुल गुलशन में। कार्यक्रम की शुरुआत कव्वाली से।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कव्वाली फिल्म धर्मा से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में। आइए सुनते हैं अब एक गज़ल रूना लैला की आवाज़ में।

ये आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है और आप सुन रहे हैं गीत गजल और कव्वाली का कार्यक्रम गुल गुलशन। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त संविता। जी हाँ, 6:41:18 हो चुके हैं दोस्तों, और अगला गीत नहीं, फिलहाल हम आपको सुनवाएंगे गजल फिल्म बाजार से लता मंगेशकर की आवाज़ में। जी हाँ, आइए सुनते हैं एक और गजल लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म बाजार से।

जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी की राह में कई मुसीबतें, कई मजबूरियाँ, कई दुश्वारियाँ चली आती हैं और हम जिनके करीब जाना चाहें उनसे कई बार दूर भी हो जाते हैं। तो फिर कुछ इस तरह की ही गज़ल बनती है चित्रा सिंह की आवाज़ में। फिल्म साथ साथ से आपने ये गज़ल सुनी। अगली गज़ल फिल्म तो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनवाएंगे गज़ल मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

अभी आपने मोहम्मद रफ़ी को सुना। दोस्तों, ये आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुल गुलशन। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सविता, और चलते चलते गुल गुलशन में आपके लिए कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म दिल एक मंदिर से मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। ये आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुल गुलशन, और इस गीत के साथ आपकी दोस्त सविता अब आपसे चाहेगी इजाज़त। लेकिन अंतिम गीत फिल्म दिल एक मंदिर से

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन

0: तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने कांग खई शिंग और अरुण ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Union Home Minister Amit Shah has said securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops and public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat today. The minister said the central government is leveraging cutting-edge technology, including drones, radars and modern fencing, to establish an unbreachable, leak-proof security grid. The Home Minister announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadrupedite security grid. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan today said that a national seed reserve of 1,74,000 quintals has been established to ensure the seed availability to the farmers. Addressing media on the second day of National Conference on Agriculture for Kharif Campaign 2026 in New Delhi, Mr. Chauhan said that 9,76,000 farmer IDs have been created so far. He said that the farmers will no longer need separate documents to access different schemes. Mr. Chauhan stressed the need for transparency in fertilizer distribution, prevention of black marketing, and ensuring proper supply to genuine farmers. He said that the government remains committed to protecting farmers' interests and ensuring that fertilizers are utilized solely for agricultural purposes. The government has said that there is sufficient stock of petrol, diesel and LPG in the country and all the refineries are operating at optimum level. Addressing an interministerial media briefing in New Delhi, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma said that LPG production is at all-time high, which is around 92,000 metric tons per day.
2: LPG ka production, it also depends on the optimization activity which is taken up within the refinery, and that impacts the production, and that's why we have slight up and down.

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है। दोस्तों, कार्यक्रम दर्पण में करती है आपकी दोस्त सविता स्वागत। कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आए हैं हम एक नजर

दोस्तों, एक नज़र में आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा की। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा में भारत की विरासत।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव

अंतोनियो गुटेरेस ने कहा था कि बढ़ते तनाव के इस दौर में शांति स्थापना स्थिरता और आशा बहाल करने का एक सिद्ध और किफायती तरीका है, लेकिन इसके लिए निरंतर राजनीतिक समर्थन विश्वसनीय वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। दोस्तों, लगभग 80 वर्षों से संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों ने विश्व भर के समुदायों में ठोस बदलाव लाए हैं। लाइबेरिया और नाम्बिया से लेकर कंबोडिया, सियेरा लियोन और तिमोर लेस्ते तक उनकी उपस्थिति सबसे अस्थिर राजनीतिक और सुरक्षा परिस्थितियों में जीवन रक्षक और परिवर्तनकारी साबित हुई है, जिससे देशों को संघर्ष में स्थायी शांति की ओर मार्गदर्शन मिला है। लगभग इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर भी हम भूतपूर्व और वर्तमान शांति रक्षकों को नमन करते हैं। उनके कार्य का सम्मान करने और उन्हें सुदृढ़ करने की अपनी साझा जिम्मेदारी की पुष्टि करते हैं। शांति में निवेश करें। दोस्तों, यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस नागरिक और सैन्य शांति रक्षकों को उनके महत्वपूर्ण दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने हेतु निर्णायक कार्रवाई का आह्वान करता है। इक्यावन हजार से अधिक नागरिक सैन्य और पुलिसकर्मी संयुक्त राष्ट्र के 11 शांति अभियानों में कार्यरत हैं, जो बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य से उत्पन्न जटिल और परस्पर जुड़े चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। बढ़ते तनाव के इस दौर में शांति स्थापना स्थिरता और आशा को बहाल करने का एक सिद्ध और किफायती तरीका है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस शांति सैनिकों की अटूट सेवा और बलिदान के साथ साथ उनके द्वारा समर्थित समुदायों के लचीलेपन को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। यह लगभग 4,500 शांति सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जिन्होंने शांति के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिनमें से अकेले 2025 में 59 शहीद हुए थे। दोस्तों, आज एक नज़र में हमने बात की संयुक्त राष्ट्र शांति अंतर्राष्ट्रीय दिवस की। ये आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दर्पण। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सविता। दोस्तों, पहल कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन सुनते हैं पहले गीत।

जी हाँ दोस्तों, 7:39:14 आपकी दोस्त सविता स्वागत करती है कार्यक्रम दर्पण में। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम विधि विधान और समाधान में आज हम बात करने वाले हैं साइबर अधिनियम 2000 की। दोस्तों, साइबर अधिनियम 2000 एक्ट भारत का प्राथमिक कानून है जो साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को नियंत्रित करता है। इसके बारे में हम आइए विवरण में बात करते हैं। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं कानूनी मान्यता, डिजिटल हस्ताक्षर और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को पारंपरिक कागजी दस्तावेज के समान कानूनी मान्यता प्रदान करता है। साथ ही साइबर अपराध और दंड यानी इसके भीतर कंप्यूटर डेटा से छेड़छाड़, हैकिंग, पहचान की चोरी और साइबर आतंकवाद जैसे अपराधों के लिए सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसकी महत्वपूर्ण धाराएं हैं धारा 65 कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना, धारा 66 कंप्यूटर सिस्टम में अनाधिकृत प्रवेश या डेटा चुराना, धारा 66C और 66D पहचान की चोरी और प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी करना, धारा 67 अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करना। साइबर एक्ट 2000 जिसे आधिकारिक तौर पर प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के नाम से जाना जाता है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, डिजिटल हस्ताक्षरों और साइबर अपराधों को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून है। इसके उद्देश्य और विशेषताएं ये हैं कि यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल हस्ताक्षरों को कागज और स्याही से किए गए पारंपरिक दस्तावेजों के समान कानूनी दर्जा और मान्यता प्रदान करता है। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। यह सरकार और आम जनता के बीच सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार और ऑनलाइन सेवाओं का कानूनी ढांचा तैयार करता है। साइबर अपराध और दंड, यह कानून विभिन्न डिजिटल अपराधों को परिभाषित करता है और उनके लिए सजा का प्रावधान करता है। डेटा चोरी और हैकिंग, पहचान की चोरी, अश्लील सामग्री का प्रकाशन, साइबर आतंकवाद, कंप्यूटर नेटवर्क में अनाधिकृत प्रवेश, सरकारी नियंत्रण एवं मध्यस्थों की जिम्मेदारी। इसके तहत सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा होने पर किसी भी कंप्यूटर संसाधन पर सूचना तक जनता की पहुंच को ब्लॉक कर सके।

सोशल मीडिया और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए उचित दिशा निर्देश तैयार करता है। प्रमुख संशोधन इसके भीतर होता है, तकनीकी विकास और अपराधों की बदलती प्रकृति के कारण इस अधिनियम में कई बार संशोधन किए गए हैं, जिनमें आईटी संशोधन अधिनियम 2008 सबसे महत्वपूर्ण है, जिसने साइबर आतंकवाद और डेटा सुरक्षा के नए प्रावधान जोड़े हैं। ये धाराएं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में कुल 94 धाराएं हैं। ये धाराएं 13 अध्यायों और 4 अनुसूचियों में विभाजित है। यह कानून डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को कानूनी मान्यता देने और साइबर अपराधों से निपटने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर कागजी दस्तावेजों हस्तलिखित हस्ताक्षरों के समान कानूनी वैधता रखते हैं और अनाधिकृत पहुंच पहचान की चोरी, प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी और साइबर आतंकवाद जैसे साइबर अपराधों के लिए जुर्माने से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा चोरिंग, हैकिंग और सोशल मीडिया से जुड़े अपराध शामिल होते हैं। साइबर अपराधों में आर्थिक और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे कि फिशिंग, नकली ईमेल मैसेज या वेबसाइट के जरिए बैंक पासवर्ड, डेबिट क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराना, ओटीपी या यूपीआई फ्रॉड के अंतर्गत बैंक अधिकारी या कर्मचारी बनकर धोखे से ओटीपी पूछना और पैसे ट्रांसफ़र कर लेना, साथ ही डिजिटल अरेस्ट जैसे कि फर्जी पुलिस या जांच अधिकारी बनकर वीडियो कॉल पर डराना और केस बंद करने के नाम पर पैसे ऐंठना है। जॉब या लॉटरी फ्रॉड, घर बैठे मोटी कमाई और लॉटरी निकलने का लालच देकर लोगों से पैसे भी ठगना है। दोस्तों, कंप्यूटर और नेटवर्क आधारित अपराध भी इसके अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटर और नेटवर्क आधारित अपराध के अंतर्गत हैकिंग के अलावा मेलवेयर और रैसमवेयर ऐसे वायरस जो सिस्टम के डेटा को लॉक या नष्ट कर देते हैं और फिरौती मांगने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डिनियल ऑफ सर्विस, जिसके अंतर्गत किसी वेबसाइट या सर्वर को जानबूझकर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भेजकर क्रैश कर देना ताकि असली यूजर्स उसका इस्तेमाल ना कर सकें। पहचान की चोरी और गोपनीयता उल्लंघन, पहचान की चोरी किसी दूसरे व्यक्ति के नाम, फोटो या आईडी प्रूफ का गलत इस्तेमाल करके फर्जी अकाउंट बनाना, डेटा चोरी करना, किसी कंपनी या व्यक्ति के निजी डेटा, पासवर्ड या व्यावसायिक जानकारी को चुराना। ऑनलाइन इसके अलावा वीडियो और अश्लीलता, किसी की निजी तस्वीरें या वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देना या पैसे वसूलना। गंभीर अपराध के अंतर्गत साइबर आतंकवाद है। देश की एकता, सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डालने के इरादे से सरकारी वेबसाइटों को हैक करना या महत्वपूर्ण सेवाओं जैसे कि बिजली, पानी, अस्पताल को बाधित कर देना, गैर कानूनी बिक्री करना, इंटरनेट के डार्क वेब के माध्यम से ड्रग्स, हथियार या गैर कानूनी चीज़ों की खरीद बिक्री करना। दोस्तों, इसके साइबर अपराध से बचाव के लिए सुझाव कुछ हम आपको दे सकते हैं जिनसे सावधानियां बरती जा सकती हैं। साइबर सुरक्षा को मजबूत रखने और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें, सोशल मीडिया पर अजनबियों से सतर्क रहें, कभी भी अपने बैंक या ओटीपी से जुड़ी जानकारी साझा ना करें। साइबर से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान और शिकायत दर्ज कराने के लिए आप भारत सरकार के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से साइबर ठगी कैसे काम करती है और इसे कैसे बचाया जा सकता है, इसका विस्तृत विश्लेषण प्राप्त किया जा सकता है और इस प्रकार से खुद को किसी भी अनहोनी या ऐसी घटना से बचा जा सकता है जो कि हमें नुकसान पहुंचाती है। तो दोस्तों, आज पहल कार्यक्रम में हमने बात की साइबर एक्ट 2000 की, साइबर क्राइम एक्ट 2000 की हमने बात की पहल कार्यक्रम में। ये आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है, आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहल।

आइए दोस्तों सुनते हैं अब एक और गीत फिल्म बहू बेगम से आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, गीतकार साहिर और संगीतबद्ध किया रोशन ने।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दर्पण और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सविता। और कार्यक्रम का अंतिम गीत पेश करने का वक्त आ चुका है। दोस्तों, फिल्म खून भरी मांग से अंतिम गीत साधना सरगम और नितिन मुकेश की आवाज़ों में गीतकार इंदीप और संगीतबद्ध किया इस गीत को राजेश रोशन ने। और इसी अंतिम गीत के साथ आपकी दोस्त सविता अब आपसे चाहेगी इजाज़त। मुलाकात होगी ऐसे ही फिर किसी दिन। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। अंतिम गीत फिल्म खून भरी मांग से।

0: নিজের পাসওয়ার্ড যেখানে সেখানে লিখে রাখবেন না। পাসওয়ার্ডের সুরক্ষা আপনার সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। সুরক্ষিত থাকুন ডিজিটালি। আপনার পেমেন্ট সংক্রান্ত কোনো তথ্য যেন ইন্টারনেট ব্রাউজারে সংরক্ষিত না থাকে। সুরক্ষিত থাকুন ডিজিটালি। নির্ভরযোগ্য নয় এমন কোনো সফটওয়্যার আপনার মোবাইল বা কম্পিউটারে ডাউনলোড করবেন না। সুরক্ষিত থাকুন ডিজিটালি। ব্লুটুথের মাধ্যমে ফাইল বা তথ্য শেয়ার করার জন্য অচেনা কোনো ব্যবহারকারীর কাছ থেকে অনুরোধ এলে সে অনুরোধ গ্রহণ করবেন না। ডিজিটাল সুরক্ষা আজকের সুরক্ষা। কোনো অ্যাপ ইনস্টল করবার আগে সেই অ্যাপ কি কি অনুমতি চাইছে আপনার মোবাইল বা কম্পিউটারে তা পড়ে বুঝে নিন। এই অনুমতির পরিণতি অনিশ্চিত মনে হলে আরও একবার ভেবে নিন। সুরক্ষিত থাকুন ডিজিটালি। নিজের ফোনের 15 সংখ্যার IMEI নম্বরটি কোনো একটা নিরাপদ জায়গায় লিখে রাখুন। সেলফোন কোনো কারণে হারিয়ে গেলে অভিযোগ জানানোর সময় কাজে লাগবে এই 15 সংখ্যার IMEI নম্বর। সুরক্ষিত থাকুন ডিজিটালি।
1: সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গের অনুষ্ঠান শুনছেন মিডিয়াম ওয়েভ 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলো হার্টজে আকাশবাণী কলকাতা। একটু পরেই খবর দিল্লি কেন্দ্র থেকে।
2: নমস্কার, আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে প্রিয়াঙ্কা অরোড়া। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और IPL क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
3: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
2: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।

0: मिलकर यह तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब वहां उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। तो हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
1: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
2: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना

0: आते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश

कार्रवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुँचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन

0: टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टू ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah announces major shift in border management leveraging technology and four-layered security involving citizens, says eradicating illegal immigration is vital to protect nation's demography. Government establishes national seed reserve of 1,74,000 quintals to ensure seed availability to farmers. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. Indian shuttlers Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter men's doubles semi-final of Singapore Open Badminton. Mixed doubles duo Dhruv Kapila and Tanisha Krasto also advanced to semi-final. And in IPL cricket, crucial qualifier 2 match underway between Gujarat Titans and Rajasthan Royals in New Chandigarh. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. He said, securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops and public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat today.
2: We have decided to completely transform the concept of the BSF's border security. In the coming days, we will create a security grid based on a four-dimensional concept. And instead of focusing solely on border security, we will introduce a new concept of territorial security. Under the Smart Border Security Project, we are working to strengthen the security grid along the entire border with Bangladesh and Pakistan.
1: The minister said central government is leveraging cutting-edge technology, including drones, radars and modern fencing, to establish an unbreachable leak-proof security grid. Moving beyond traditional border security, this model introduces the concept of complete territorial security by actively integrating citizens, civil administration, the local police and the military alongside the BSF. Referring to international borders, Mr. Shah added that with the formation of the new government in West Bengal, the long-standing deadlock has ended and the state government has provided land for border fencing within a single week. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan today said that a national seed reserve of 1,74,000 quintals has been established to ensure seed availability to farmers. Addressing media on the second day of National Conference on Agriculture for Kharif Campaign 2026 in New Delhi, Mr. Chauhan said that 9,76,000 farmer IDs have been created so far.

0: আমাদের সরকারের যে দপ্তর গুলো আছে তারা মনিটরিং করছে, পুলিশকে বলা হয়েছে এবং জেলা শাসকদের বলা হয়েছে পোস্টমর্টম বা অন্যান্য যেগুলো করার করা। আমরা সরকারের পক্ষ থেকে এই সাতটি পরিবারকে আমরা 4 লক্ষ টাকা করে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করছি এবং 4 লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ জেলা শাসকরা স্থানীয় বিধায়কদেরকে দ্রুততার সঙ্গে এই তাদের কম্পেনসেশন পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।
1: আইপিএল ক্রিকেটে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে নিউ চণ্ডীগড়ের মহারাজা যাদবেন্দ্র সিং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রাজস্থান রয়্যালস গুজরাট টাইটান্সের সামনে জয়ের জন্য 215 রানের লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে। শেষ পাওয়া খবরে গুজরাট 5 ওভারে বিনা উইকেট হারিয়ে 59 রান করেছে। শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবরের কিছু অংশ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, দেশের জনবিন্যাস ঠিক রাখতে সীমান্ত সুরক্ষিত করা এবং অনুপ্রবেশ আটকানো অত্যন্ত জরুরি। গুজরাটের ভুজে তিনি আজ ভারত পাকিস্তান সীমান্ত সুরক্ষায় চতুর্মুখী নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেন।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अपर्णा सिंह। मुख्य समाचार। इबोला के बढ़ते मामलों के बीच भारत ने अफ्रीका को चिकित्सा सामग्री की पहली खेप भेजी। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। अमेरिका और ईरान ने मौजूदा युद्ध विराम को बढ़ाने और हुर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए 60 दिवसीय अस्थायी समझौता ज्ञापन की समीक्षा की। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 1.5% की गिरावट। और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि कांगो गणराज्य में इबोला के 906 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। इनमें 223 लोगों की मौत हुई है जिसकी जांच की जा रही है। कांगो में इबोला के बुंदीबुग्यो स्ट्रेन का संक्रमण जारी है। युगांडा में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कांगो में इबोला के 125 मामलों की पुष्टि हुई है। युगांडा में भी इबोला के 7 मामलों की पुष्टि हुई है, हालांकि सामुदायिक संक्रमण की खबर नहीं है। पूर्वी कांगो में इबोला संक्रमण 2 महीने पहले शुरू हुआ था। बुंदीबुग्यो स्ट्रेन के लिए कोई अनुमोदित टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
3: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
2: अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लेख करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के साथ लंबे समय से जारी गतिरोध समाप्त हो गया है। राज्य सरकार ने 1 सप्ताह में ही सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन उपलब्ध करा दी है। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग क्लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि भारतीय व्यापार दल ने अप्रैल में अमरीका का दौरा किया था। अगले सप्ताह अमेरिका के व्यापारिक दल के भी भारत आने की उम्मीद है। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर इस वर्ष के अंत तक वार्ता करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा कनाडा

0: के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिंधु ने महत्वाकांक्षी CEPA समझौते पर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष राजनयिक वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। दोनों पक्ष मौजूदा युद्ध विराम बढ़ाने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य फिर से खोलने के लिए 60 दिन के अस्थायी समझौता ज्ञापन की समीक्षा कर रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस ने पुष्टि की है कि वार्ताकार प्रारंभिक समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अंतिम स्वीकृति अभी बाकी है। एक रिपोर्ट।
1: ताज़ा परिस्थितियों के मद्देनजर खाड़ी सहयोग परिषद के देश तेजी से कदम उठा रहे हैं। इन देशों के लिए युद्ध विराम का टूटना केवल एक कूटनीतिक झटका नहीं है, बल्कि अस्तित्व का संकट है। कतर ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री नियमों को लेकर अंतिम गतिरोध को सुलझाने के लिए ईरान में विशेष मध्यस्थता दल भेजे हैं। कतर एक संरचित एस्क्रो व्यवस्था स्थापित करने पर भी काम कर रहा है, ताकि ईरान को जारी किए जाने वाला धन केवल मानवीय सहायता से जुड़े कार्यों में हो सके। एक और जटिलता लेबनानी पहलू में निहित है। ईरान ने दबाव डाला है कि ये समझौता ज्ञापन सभी क्षेत्रीय मोर्चों को शामिल करे, लेकिन दक्षिणी लेबनान में इसराइल के निरंतर सैन्य अभियान और विस्थापन आदेशों से एक महत्वपूर्ण विसंगति उत्पन्न होती है। वर्तमान में तैयार किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार लेबनान की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज लगभग 1.5% की गिरावट आई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड 1.7% गिरकर $92.14 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ताज़ा समाचार के अनुसार वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड भी 1.4% गिरकर $87.64 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
2: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस कैरोस हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापत्तनम पहुंचने की आशा है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स और ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी ने मलेशिया के कांग खे शिंग और अरुण ताई को हराया। वहीं भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ने चेन तांग जी और तो ई वे की मलेशियाई जोड़ी से वॉकओवर मिलने पर अगले दौर में प्रवेश किया। तो ई वे के घुटने में चोट लगने के कारण मलेशियाई जोड़ी को मैच के बीच से ही हटना पड़ा। कैलिफोर्निया के 14 वर्षीय भारतीय मूल के अमरीकी छात्र शे पारीख ने प्रतिष्ठित स्क्रिप्स राष्ट्रीय स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीत ली है। उन्होंने 90 सेकंड में 35 में से 32 शब्दों की सही स्पेलिंग बताकर ये खिताब अपने नाम किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: Please stay tuned for the news from Delhi in a short while from now.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD News को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच

मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिले तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।